0: The time for sowing has just started in India, when fertiliser application is at its peak. Farmer Yashpal mainly grows sugarcane and paddy on his plot of land.
1: अप्रैल से शुरू होकर मई जून तक धान तैयार होता है यानी लगना उसके बाद में नवंबर में ये धान कट जाता है फिर हमारा अब युद्ध के बाद में जो है अब हम जो खाद अब खरीदने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी लगाना शुरू होगा तो अभी दुकानों पे फिलहाल अब तो फिलहाल मौजूद है पर जब जैसे जैसे किसान इसे लगाएगा तब इसकी दिक्कत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है
0: India is one of the world's largest users of fertilizer at 60 million tons, behind only China. Much of its urea is produced domestically, but it also imports more urea than any other country.
2: Nearly 20 to 25% of our urea requirement, approximately 70% of the phosphorus, and almost entire quantities of potassic fertilizers, we depend on imports. And imports, particularly you know, urea or phosphate, some of the Middle East countries, and this kind of you know, supply chain disruptions happens. So it is definitely going to affect domestic prices of these inputs. So likewise, we import about 60% of our LNG requirement, and most of it comes from these Middle East countries. And you know, LNG also serves as a feedstock for urea production.
0: Gas supplies have been cut by one third. And the strain on LNG has caused local urea production to drop. Fertilizer sellers like this one in Kashipur are forced to raise their prices. Their products come from manufacturing plants in India. While the wholesale price of urea has remained flat, other types of fertilizers have gone up by about 50 to 150 rupees per bag.
3: Urea khad ka ek chota sa data deta hu. तो अप्रैल में हमने दो से तीन गाड़ी लास्ट ईयर परचेज करी थी इस साल मुझे एक भी गाड़ी नहीं मिल पाई है एक गाड़ी मतलब 350 से 400 बैग्स तो पिछले साल से तो बहुत कम है परचेज तो बोझ हमें डालना पड़ेगा अगर हमारा मार्जिन बढ़ता तो हम मैनेज कर लेते अपने मार्जिन में से डिस्काउंट दे के बट हमारा मार्जिन ही लिमिटेड है इससे कम मार्जिन पर काम करेंगे तो हमारा काउंटर सर्वाइव नहीं कर पाएगा शट डाउन करना पड़ेगा खाद का काम हमें
1: जब हमें पीछे से कोई सामान या खाद या नहीं मिलेगा तो फिर हम अपनी फसल को उसे कम मात्रा में ही देंगे क्योंकि हमें पूर्ति करनी पड़ती है उसे हम अपनी फसल में थोड़ा कम मात्रा में करके फिर और जो लोकल हैं उनको लगा के फिर पूर्ति करते हैं कम मात्रा दी जाती है यूरिया की और डीएपी की दिक्कत आती है फसल में जो है हानि होती है यानी पैदावार में कमी आती है
0: There are three crop seasons in India, Kharif, Rabi, and Zaid. Every year, India uses 40 million tons of urea. According to the government, the country had 6.2 million tons of the crop nutrient in its reserves as of March.
2: We have just harvested the Rabi crop where we didn't require much of the fertilizer. In the forthcoming Kharif season crop, if the fertilizer prices increase. And generally what we find is that fertilizer is not much responsive to this kind of changes because farmers have to apply. They will buy it even if the prices rise to sustain.